0: रखड़ीश के बादशाह जी महाराजा
1: जी गुरु जी वाज अंतर जान सच्चे पासा जी महाराज तन तन साहिब गुरु जी महाराज आप दे पावन दरबार तखत सचखंड श्री हजूर साहिब के कीर्तन दी हाजरी प्रदेव में आप जी संतालो बेअंत माया हाजिर हुई है जिस खजाने चो माया हाजिर हुई है सुख जाने भरपूर करने गुरु सिखी नाम दान दी बख्शिश करनी यात्रा सफली करनी।

चक्र वर्ते चतार चक्र भुगते स्वयं भव समं सर्वदा सुभुक्ते दुखालन प्रणासे दयालु स्वरूपे सदांग संगे अपांगां विभूते देखते को भतैन सुरत बेदरंग आपतज आजनान गुरु गोविंद सिंह जी श्रीकार पुरुज सहाय दरबार में तिरु दरबारा सच खंड वसन निरंकारा लक्ष्मी खड़ी तुमने दरबार।

जय गुरु गुरु निवास अंतरजामी सच्चे पातशाह जी महाराज धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आप जी दे पावन पवित्र स्थान तख्त सचखंड दरबार दियां हाजरियां भरदे होए कीर्तन दे सत्ता जो संगत वालों बिनत माया हाजर हो जिस खजाने विच माया हाजर कीते सो सुख जाने भरपूर करना नाम दान गुरसिखी वाला जीवन बसना दे अरपता बख्शनी आसा मनसा

अजात हरि अपात हरि मित्र हरि अमात हरि रोग हरि शोक हरि भरम हरि करम हरि। अजय हरि अभय हरि भेद हरि छेद हरि खंड हरि भंड हरि दंड।

तिस्तु ही न दस्तु ही ब्रिछस्तु ही पतस्तु ही चितस्तु ही उर्धस्तु ही भजस्तु अंग रटस्तु

त्व प्रसाद कबित कुकमल हरि गज गद हा विभूत दारी गिद्वा मसान बास करे हुई करत है कुकमट बास लग डोलत उदास मृग तरवर सदीव मोर साधे मरत है बिंद के सथैया ताहे ही जिकी बडैया देद बंदरा सदीव पाए नांगे ही फिरत है अंगना अधीन काम क्रोध में प्रवी ने एक ज्ञान के विहीन छेन कैस के तरत है भूत बन चार चित छौना सबे दूधा धारी बौन के आहरी सोफ जंग जानियत है त्रिण के फजैया धन लोभ के तजैया दे तो गौ

एक धूर ते अनेक धूर पूरत है, धूर के कनु का फिर धूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहाएंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होए, ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। केते गच मछ केते उनको करत भच, केते अच वच हो सब पछ उड़ जाएंगे। केते नभ बीच अच पछ को करेंगे भज, केते प्रताच हो।

काल के बनाए सब काल ही चबाहेंगे। तेज ज्यो तेज में अतेज जैसे तेज ऋण ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। कुकत फिरत कित रोवत मरत कित जल में डुबत कित आग में जरत है। कित गंग बासी कित मदीना मकानी वासी के तक उदासी के भ्रमाई फिरत है। करवत साध कित भू में गड़त कित सुआ पे चढ़त कित दूह को भरत है। ज्ञान में उड़त कित जल में रहत कित ज्ञान के भीन जग जा रही मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे दान वडे बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी। घस हारे चंदन लगाए हारे चोआचार पूज हारे बाहन चढ़ाए हारे लापसी। गाह हारे गोरन मनाए हारे मड़ी मटली बहारे भीतन लगाए हारे छापसी। गाए हारे गंधर्व बजाए हारे किन्नर सब पच हारे पंडित तपंत हारे तापसी।

रूप रेखं कहां बासता को फिर कौन फेखं कहां नाम ताको कहा कह कह आवे कहा कह बखानो कह मन आवे न रोगं न सोगं न मोहं न मातं न कर्मं न भर्मं न जन्मं न जातं अद्वेखं फेखं जो निस्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे परेयं परा परं प्रज्ञा प्रकाशी अछेदं गच्छयादद्व अविनाशी न जातं न पातं न रूपं न रंगे नमो आदभंगे नमो आदभंगे किते कृष्ण से कीट गोटे उपाय उसारे गड़े फिर

तंग न मातंग न जातंग न कायंग न नेहंग न गेहंग न भर्मंग न भायंग न रूपंग न भूपंग न कायंग न कर्मंग न त्रासंग न प्रासंग न भेदंग न भर्मंग सदेवंग सदा सिद्ध विर्थंग स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे नृयुक्तं प्रभादनुक्तं प्रतापे युक्तं गच्छयाद अविक्ते यथापे विभुक्तं गच्छयाद अच्छय स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे न नेहं न गेहं न शोकं न साकं परेयं पवित्रं पुनीतं गताकं न जातं न पातं न मित्रं न मंत्रे नमो एक तंत्रे नमो एक तंत्रे न धर्मं न भ्रमं न सर्मं न साके न बर्मं न चर्मं न कर्मं न बाके न सत्रं न मित्रं न पुत्रं स्वरूपे नमो आद रूपे नमो आद रूपे कहूँ कंज के मंज के भ्रम भूले कहूँ रंग के राज के धर्म लूले कहूँ देश के भेष के धर्म धामे कहूँ राज के साज के बाज तामे कहूँ अक्षर के पक्षर के सिद्ध

कहूँ धर्म के कर्म के हरम जाने, कहूँ धर्म के कर्म के भरम माने, कहूँ चार चेष्टा कहूँ चित्र रूपं, कहूँ परम प्रज्ञा कहूँ सर्वभूपं, कहूँ नेह गृहं कहूँ देह दोखं, कहूँ औषधि रोग के शोक सुखं, कहूँ देव विद्या कहूँ दैत बानी, कहूँ जक्ष गंधर्व किन्नर कहानी, कहूँ राजसी सादगी तामसी हूँ, कहूँ जोग विद्या धरे तापसी हूँ, कहूँ रोग रहता कहूँ जोग जुगतं, कहूँ भूम के भुगत मैं भरम भुगतं, कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हूँ, कहूँ जक्ष विद्या धरे मानवी हूँ, कहूँ राजसी हूँ कहूँ राज कन्या, कहूँ श्रेष्ठ की पृष्ठ की ऋष बनया, कहूँ वेद विद्या कहूँ व्योम बानी, कहूँ कोक की काव कथा कहानी, कहूँ अद्र सारंग कहूँ भद्र रूप, कहूँ मद्र बानी कहूँ क्षुद्र स्वरूपं, कहूँ वेद विद्या कहूँ काव रूपं, कहूँ चेष्टा चार चित्रंग स्वरूपं, कहूँ परम पुराण को पार पावे, कहूँ बैठ कुरान के गीत गावे, कहूँ शुद्ध सेखं कहूँ ब्रह्म धर्मं, कहूँ वृद्धावस्था कहूँ बाल कर्मं, कहूँ ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं, कहूँ नेह देहं कहूँ त्याग गृहं, कहूँ जोग भोगं कहूँ रोग रागं, कहूँ रोग हर्ता कहूँ भोग त्यागं, कहूँ राजसाजं कहूँ राजरितं, कहूँ पूरण प्रज्ञा कहूँ परम प्रीतं, कहूँ आरबी दौर की पारसी हूँ, कहूँ पहलवी पस्तवी संस्कृति हूँ, कहूँ देश भाख्या कहूँ देववाणी, कहूँ राज विद्या कहूँ राजधानी, कहूँ मंत्र विद्या कहूँ तंत्र सारंग, कहूँ जंत्र रीतं कहूँ शस्त्र धारंग, कहूँ होम पूजा कहूँ देव अर्चा, कहूँ पिंगुला चारणी गीत चर्चा, कहूँ बीन विद्या कहूँ गान गीतं, कहूँ मलेज भाख्या कहूँ वेद रीतं, कहूँ नृत विद्या कहूँ नागबानी, कहूँ गारडू गूढ़ कथा कहानी, कहूँ अक्षरा पक्षरा मक्षरा हूँ, कहूँ वीर विद्या भूतं प्रभा हो, कहूँ छैल छाला धरे छत्रधारी, कहूँ राजसाजं धे राजाधिकारी, नमो नाथ पूरे

अनुभूत तेज अंश जगात करता सदीव हरता सनाता सन अडोल अनुभूत करम दाता दयाल अनुभूत धर्म। जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जय करम भरम नहीं धर्म ध्यान जय नेह गेह नहीं व्योत बान। जय जात पात नहीं शत्रु मित्र जय नेह गेह नहीं चेहन चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेख जय जन्म जात नहीं भरम भेख। जय करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात जय नाम थाम नहीं वर्ग ब्याद जय रोग शोक नहीं सत्र साध। जय त्रास वास नहीं देह नास जय आद अंत नहीं रूप रास जय रोग शोक नहीं जोग जुगज जय त्रास आस नहीं भूम भुगत। जय काल ब्याल कट्यो न अंग अक्षय स्वरूप अक्षय अभंग जय नेत नेत उचरंत वेद जय अलख रूप कथत कतेब। जय अलख रूप आसन अडोल जय अमित तेज अक्षय अतोल जय ध्यान काज मुंजन अनंत कई कल्प जोग साधत दुरंत। तन सीध घाम बरखा सहंत कई कल्प एक आसन बितंत कई जतन जोग विद्या विचार साधंत तद पावत न पार। कई उर्ध बाह देसन भ्रमंत कई उर्ध मध्य पावक झुलंत कई सिमृत शास्त्रत उचरंत वेद कई गोक काव कथत कतेब। कई अगन होत्र कई पौन हार कई कर्त कोट मृत को आहार कई कर्त साक पै पत्र भक्ष नहीं तदप देव होवत प्रत्यक्ष। कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूँ वेद रीत जग याद क्रम कहूँ अगन होत्र कहूँ तीर्थ धर्म। कई देश देश भाखार टंत कई देश देश विद्या पटंत कई गर्त भांत भांतन विचार नहीं नैकता सपायतन पार। कई तीरथ तीरथ भरमत सोभरम कई अगन होत्र कई देव करम कई कर्त वीर विद्या विचार नहीं तदवता सपायतन पार। कहूँ राजरीत कहूँ जोग धर्म कही सिमृत शास्त्रत उचरत सो करम न्यौली याद करम कहूँ हस्तदान कहूँ अश्वमेध मख को बखान। कहूँ करत ब्रह्म विद्या विचार कहूँ जोग रीत कहूँ वृद्ध चार कहूँ करत जक्ष गंधर्व गान कहूँ धूप दीप कहूँ अर्घ दान। कहूँ पितृ करम कहूँ वेद रीत कहूँ नृत नाच कहूँ गान गीत कहूँ करत शास्त्र सिमृत उचार कही भजत एक बग निराधार। कई नेह देह कई गेह वास कई ब्रह्म देश देश अनुदास कई जल निवास कई अगन ताप कई जपत उर्ध लटकंत जाप। कई जपत जो कल्पं प्रजंत नहीं तदप तास पायत न अंत कई कर्त कोट विद्या विचार नहीं तदप दिष्ट देखे मुरार। बिन भगत सगत नहीं भरत पान बहु करत होमर जग दान बिन एक नाम एक चित्त लीन भूकुटो।

जय जम्पह जुकण जूह जुवंग भय गंपह मीर पयाल भुवंग तपतापत सर्प जलेर धलंग धन उजरत इंद्र कुमेर बनंग अनखेद स्वरूप भेद भयंगन खंड अभूत छेद छ्यंगन काल पाल दयाल सुवंग जे ठट्यंग मीर आकाश भुवंग अनखंड अमंड प्रचंड नरंग जहर चंग देवा देव वरंग सब कीनी दीन जमीन जमा जहर चंग सर्व मकीन मका जहराग न रूप न रेख रुखंग जे ताप न साप न सुख सुखंग जे रोग न सोग न भोग भुयंग जे खेद न भेद न छेद छयंग जे जात न पात न मात पितंग जे रचयंग छत्री छत्र छितंग जे राग न रेख न रोग भृणंग जे द्वैख न ताग न दोख गणंग जय अंड हत ब्रह्मंड रचियो दस चार करी नव खंड सचियो रज तामस तेज तेज कियो अनुभव पद आप प्रचंड लियो श्रे सिंध रूपिंद नगेंद्र गंग श्रे जच गंधर्व फणिंद भुजंग रच देव अदेव अभेव नरंग नर पाल नृपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रच अंड सेत ज्योत भुजंग ये देव देव सरात पितंग अनखंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जात न पात न ज्योत जुतंग जय तात न मात न भ्रात सुतंग जय रोग न शोक न भोग भुवंग जय जम्पह किन्नर जच जुवंग नर नार नपुंसक जाह किए गण किन्नर जच भुजंग दिए गजबाज रथाधिक पांद गणंग भवभूत भविख भवान तुवंग जय अंडज सेतज जेर रजंग रज भूम आकाश पताल जलंग रज पावक पवन प्रचंड बली वन जास गियो फल फूल कली वो मेरा आकाश निवास चितंग रज रोज एकादश चंद्र वृतंग दुत चंद दिनी सह दीप दई जय पावक पवन प्रचंड मई जय खंड अखंड प्रचंड किए जय छत्र

वेद छेदन रंग जे चार चतुर्दिश चक्र फिरंग जय राग न रंग न रेख रुगम जय शोक न फोक न जोग जुगम भो भंजन गंजन आदि सिरंग जय बंदत देव देव नरंग गण किन्नर जाच भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभा अन गंज वृतंग जय पार न पावत पूर मतंग अनखंड स्वरूप दंड प्रभा जय जमपद वेद पुराण सभा जय वेद कतेब अनंत कह जय भूत अभूत न भेद लह जय वेद पुराण कतेब जपै सत सिंध अधो मुख तावत पै कई कल्पन।

है अभंज भंज जानिया, भूत भूत है सदा गंज गंज मानिए। अदेव देव है सदा भेव भेव नाथ है, समस्त सिद्ध वृद्ध दास दीव सर्वसात है। अनाथ नाथ नाथ है अभंज भंज है सदा गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्ध दा। अनूप रूप स्वरूप है अछिज तेज मानिए, सदीव सिद्ध शुद्ध दा।

न दात मात जात है न पात जिहन वरण है अदेक असेख अभेक है सदीव विश्व भरण है विश्वंबर विश्वनाथ है विशेक विश्व भरण है जिमी जमान के विखे सदीव करम भरम है अद्वेख है अभेक है अलेख नाथ जानिए सदीव सर्व ठौर में विशेक अन मानिए न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई पुराण कुरान नेत नेत गय बतावई न करम में न धर्म में न भरम में बताइये अगंज आद देव है कहो सो गैस पाइये जिमी जमान के विखे समस्त एक ज्योत है न घाट है न बाढ़ है न घाट बाढ़ होत है नहान है न बान है समान रूप जानिए मकीनो मकान प्रमाण तेज मानिए न देह है न गेह है न जात है न पात है न मंत्र है न मित्र है न तात है न मात है न अंग है न रंग है न संग है न साथ है न दोख है न दाग है न द्वैख है न देह है न सिंह है न स्यार है न राव है न रंग है न मान है न मौत है न साक है न संक है न जच है न गंधर्व है न नर है न नार है न चोर है न साव है न साह को कुमार है न नेह है न गे है न देह को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छल को मिलाओ है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को स्वरूप है न राग है न रंग है न रेख है न रूप है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छाया को मिलाओ है न राग है न रंग है न रूप है न रेख है न कर्म है न धर्म है अजन्म है अभेक है न तात है न मात है अख्याल खंड रूप है अछेद है अभेद है न रंग है न भूप है परे है पवित्र है पुनीत है पुराण है अगंज है अभंज है करीम है कुरान है अकाल है अपाल है ख्याल है अखंड है न रोग है न सोग है न भेद है न भंड है न अंग है न रंग है न संग है न साथ है प्रिया है पवित्र है पुनीत है प्रमात है न सीत है न सोच है न घ्राम है न घाम है न लोभ है न मोह है न क्रोध है न काम है न देव है न दैत है न नर को स्वरूप है न छल है न छिद्र है न छिद्र की विभूत है न काम है न क्रोध है न लोभ है न मोह है न द्वैख है न भेख है न दुई है न द्रोह है न काल है न बाल है सदीव दयाल रूप है अगंज है अभंज है अभू अभरम है अभूत है अछेद छेद है सदा गंज गंज गंज है अभूत वेघ है वली अरूप राग रंग है न द्वैख है न भेख है न काम क्रोध कर्म है न जात है न पात है न चित्र चिहन वर्ण है बेअंत है अनंत तेज जानिए भूम विज है सदा छिज

जग रूप है न रूप रे करार है, न हाओ है न भाओ है न दाओ को प्रकार है। गजाधपी नराधपि करंत सेव है, सदा सिद्धस्पति तपस्पति वनस्पति जप सदा अगस्त आद जे बटे तपस्तपि विषे किए बेअंत ब्यंत ब्यंत को करंट पाठ पेखिए। अगाध आद देव की अनाद बात मानिए, न जात पात मंत्र मित्र शत्रु सने जानिए। सदीव सर्वलोक के कृपा

चक्र चिन्ह वर्ण जा को जात पात न भेख रूप रेख न रंग जागो राग रूप न रंग सर्व लायक सर्व घायक सर्व ते अनभंग सर्वदाता सर्व ज्ञाता सर्व को व्रतपाल दीन बंध दयाल स्वामी याद देवा पाल दीन बंध प्रवीण श्रीपद सर्व को करतार वरण जहन न चक्र जाको चक्र चहन कार जात पात न गोत्र गाथा रूप रेख न परन सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व भू को भरन दुष्ट गंजन शत्रु

कवन रिष्ट को पुष्ट है कहां सृष्ट को विचार, कवन सृष्ट को भ्रष्ट है कहां सकर विस्तार दोहरा। कहां कर्म को कर्म है कहां भ्रम को नाश, कहां जतन की चेष्टा कहां

आयुध बांधे सैन में मर्दन काल सुरंग अष्टायत चमके भूखण दमके अतसी झमके फुंक फनंग जय जय हो सीमा खास मर्दन रमक बर्दन दैत जिनंग चंडासुर चंडन मुंड विमुंडन खंडे खंडन खून खिते दामनी दमंकन धुजा फुरंकन फणि फुंकारण ज्योत जिते सरधार विपर खण दुष्ट प्रकर खण गुष्ट प्रहर खण दुष्ट मथे जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन भूम आकाश तलूर्ध अधे दामनी प्रहासन सुछव निवासन सृष्टि प्रकाशन गूढ़ गते रक्तासुर आचन युद्ध प्रमाचन नृत्य नराचन धर्म प्रति श्रोणंत चिंती अनल विवंती जोग जयंती खड़ग धरे जय जय हुसी मैं खासुर मर्दन पाप विनाशन धर्म करे अघोख निवारण दुष्ट प्रचारण सृष्ट उबारण शुद्ध मते फणियन फुंकारण बाघ पकारण सस प्रहारण साध मते सहति सन्नाहन दुष्ट प्रवाहन बोल निवाहन तेज तुलंग जय जय हुसी मैं खासुर मर्दन भूमा काश पताल जलंग चाचर चमकारण चिच्छुर हारण धूम धुंकारण द्रव मथे दाढ़ व्रतंते जोग जयंते मर्ज मथंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चांद प्रकाशन सूरज प्रतेजन अष्टभुजे जय जय हुसी मैं खासुर मर्दन परम विनाशन धर्म धुजे घुंगुरु घमंकण शस्त्र झमंकण फण्यर फुंकारण धरम धुजे अष्टाड प्रहासन सृष्ट निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र गते केसरी प्रवाहे सुध सन्नाहे अगमथा हे एक वृते जय जय हुसी मैं खासुर मर्दन आद कुमार अगाध वृते सुर नर मुन बंदन दुष्ट निकंदन पृष्ठ विनाशन मृत मथे कावरु कुमारे अधम उधारे नरक निवारे आद कथे किंकिणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंहारोहण पितल तले जय जय हुसी सब ठौर निवासन बाय बतार आकाशन ले संकटी निवारण अधम उदाहरण तेज प्रकर खण तुंद तवे दुख दोख दहंती ज्वाल जयंती आद अनाद गाद छे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तत तपत तपत प्रतापण जपत जिवे जय जय हुसी सहस्र प्रकर खण आद अनिल गाद अभे चंचला जखंगी अलग भुजंगी तुंद तुरंगण तिच्छ सरे गर्क सा कुठारे नरक निवारे अधम उधारे तूर भुजे दामनी दमंके के हर लंके आद तंके क्रूर कथे जय जय हुसी रक्ता सुर खंडन शुंभ चक्रतन शुंभ मथे बारज बिलोचन प्रतन विमोचन सोज विसोचन कौज कसे दामनी प्रहासे सुख सरनासे सुभृत सुभासे दुष्ट ग्रसे चंचला प्रांगी वेद प्रसंगी तेज तुरंगी खंड सुरंग जय जय हुसी मखासुर मर्दन आद अनाद गादुर्धंग घंट का विराजे रुण झुण बाजे भ्रम भय भाजे सुनद सुरंग को किल सुन लाजे किल विक भाजे सुखो पराजे मथ उरंग दुर्जन दल दज्जय मंथन दज्जय सवैन भज्जय रोह रणंग जय जय हुसी मैं खासुन मर्दन चंड चक्रतन आद गुरंग चाचरी प्रजोधन दुष्ट विरोधन रोस अरोधन क्रूर विथे धूमराज विध्वंसन प्रलय प्रजुंसन जग विध्वंसन शुद्ध मते जाल पाजयंती शत्रु मथंती दुष्ट प्रदाहन गाढ़ मते जय जय हुसी मैं खासुर मर्दन आद जुगाद अगाध कते खत्रियाण खतंगी अभ भंगी आद अनंगी अगाध कते वृडलाज बिहंडन चछुर दंडन तेज प्रचंडन आद प्रते सुर नर प्रतिपारण पति दोधारण दुष्ट निवारण दुख हरे जय जय हुसी मैं खासुर मर्दन विश्व विधुन संसृष्ट करे दामनी प्रकाशे उन्तरनासे ज्योत प्रकाशे अतुल बले दान वि प्रकर खण सर्वर वर खण दुष्ट प्रधर खण बितल तले अष्टायद बाहन बोल निबाहन संत बनाहन गूढ़ कते जय जय हुसी मैं खासुर मर्दन आद अनाद अगाध वृते दुख दुख प्रवच्छन सेवक रक्षण संत व्रतक्षण शुद्ध सरे सारंग सन्नाहे दुष्ट प्रदाहे अर्धलगाहे दुख हरे गंजन गुमाने अतुल प्रवाने संत जमाने आद अंते जय जय हुसी मैं खासुर मर्दन साध प्रतक्षण दुष्ट हंते कारण करीली गर्भ गहीली ज्योत जतीली धुंध मते अष्टायत चमकण शस्त्र झमकण दामिन दमकण आद वृते
डुकडुकी दमंगे बाघ बंके हुजा फरंगे सुध गते जय जय होसी मैं खासुर मर्दन आद जुगाद अनाद मते चचरा सुर मारण नरक निवारण पति दो धारण एक भटे पापान बिहंडन दूष प्रचंडन खंड अखंडन काल कट्टे चंद्रानन चारे नरक निवारे बद दो धारे मुंड मथे जय जय होसी मैं खासुर मर्दन धूम्र विदुंसन आद कथे रक्ता सुर मर्दन चंड चक्र दन दान वर्दन विडाल वदे सरदार विवरखन दुर्जन धरखन अतुल अमरखन धर्म छुदे धूमराज विदुंसन सुरणत चुनसन सुंभन।

पशु नगनाग नाथव सर्व समय सबको प्रतपार। पोखत है जल में थल में पल में कल के नहीं करम बिचारे। दीन दयाल दयानिध दोखन देखत है परते तनहार। दाहत है दुख दोखन का दल दुजन के पल में दल डारे। खंड अखंड प्रचंड पहाड़न पूर्ण प्रेम की प्रीत संभार। पार न पाए सके पद्मावत वेद कते भेद उचारे। रोज ही राज पे लोकत राज करो खुरहान की रोजी नटार। कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भविख भवान बनाए। देव देव खपे अहम वेवना भेव लख्यो भ्रम स्यों फरमाए। वेद पुराण कतेव कुरान हसेव थके कर हाथ नाए। पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पद स्यों किंसरी।

राखत है अपनो कर दय कर पाप समूह न भेटन पावे। और की बात कहा कह तू सो सो पेट ही के पट बीच बचावे। जच भुजंग सो दानव देवा भेव तुम्हें सब ही कर ध्यावे। भूम आकाश पताल रसातल जच भुजंग सब सिर न्यावे। पाए सके नहीं पार प्रभाहु को नेत ही नेत भेद बतावे। खोज सके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे। नारद से चतुरानंद से रुम नारिक से समूह मिल गायो। वेद कतेब न भेद लख्यो सब हार परे हर हाथ न आयो। पाए सके नहीं पार उमापद सिंधु सनाद सनंतन ध्यायो। ध्यान धरो तह को मन में जह को अमितोज सब जग छायो। वेद पुराण कतेब कुरान अभेद नृपान सब बजहारे। भेद न पाए सक्यो अन भेद को खेद तह अनछेद पुकारे। राग न रूप न रेख न रंग न साक न शोक न संग तिहारे। आद अनाद अगाध वेख अद वेख जप्यो दिन ही कुल तारे। तीर्थ कोट किए स्नान दिए बहुदान महाव्रत धारे। देश फिरो कर भेष तबोधन के धरे न मिले हर प्यारे। आसन कोट करे अष्टांग धरे वो न्यास करे मुख कारे। दीन दयाल काल भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे। त्व प्रसाद कबित अत्र के चलैया छित छत्र के धरैया छत्र धारियों के छलैया महासत्रण के साल है। दान के देवैया महामान के बढ़िया अवसान के देवैया है कटैया जय मजाल है। युद्ध के जितैया विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के देवैया महामान हो के मान है। ज्ञान हूँ के ज्ञाता महाबुद्ध ता के दाता देव। काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है। पूर्व बिना पार पावे हिंगुला हिमालय ध्यावे। गौर कर देजी गुण गावे तेरे नाम है। जोग जोग साधे पौन साथ ना कि तेग बांधे। अरब के अरबी अराध तेरे नाम है। फरा के फिरंगी माने कंधारी गुरे से जाने। पच्छम के पच्छमी पछान निज काम है। मरहटा मंगेरी तेरी मान सो तपस्या करे। देड़े वे तिलंगी पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंग वाली दिल्ली के दिल वाली तेरी आज्ञा में चलत है। रोह के रोहले मांग देख के मंगेले वीर बंग से बुंदेले पाप पुंज को मलत है। गोखा गुन गावे चिन्ह मचीन के शीस न्यावे। तिब्बति ध्याय दुख देह के दलत है। जिन्हें दोहे ध्यायो तिन्हें पूर्ण प्रताप पायो। सर्व धन धाम फल फूल सुफलत है। देव देव दान को सुरेश दान वान को महेश गंग धान को अभेश कहियत है। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहु बे नदीन साध दीन कहियत है। पाइये न पार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है। अपार कहियत है हाथी की पुकार पल पाछे पहुँचा तता है। चिट्ठी की चिंगार पहले ही सुनियत है। किते इंद्र द्वार किते ब्रह्मा मुख चार किते कृष्ण अवतार किते राम कहियत है। किते ससरासी किते सूरज प्रकाशी किते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है। किते महादीन किते व्यास प्रवीण किते कुमेर कुलीन किते जश कहियत है। करते है विचार बन पूर्ण को पावे पार ताहि दया पार निराधार लहियत है। पूर्ण अवतार निराधार है न पार अवार पाई न पार व अपार के बखानी है। अद्व अविनाशी परम पूर्ण प्रकाशी महारूप हूँ के राशि है। अनासी के कमानी है जंत्र हूँ न जात जा की बाप हूँ न माय जा की पूर्ण प्रभा की सो छटा के अनुमानी है। तेज हूँ को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनि को मंत्र है निजंत्र के जानी है। तेज हूँ को तर है के राजसी को सर है के शुद्धता को घर है के सिद्धता के सार है। कामना की खान है के साधना किसान है। विरक्तता की बान है के बुद्ध को उदार है। सुंदर स्वरूप है के हूपन को भूप है के रूप हूँ को रूप है कुमत को प्रहार है। दीनन को दाता है गनीमन को गारक है। साधन को रचक है गुणन को पहार है। सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को अभूत है के क्रुद्ध को अभूत है के अचय अविनाशी है। काम को कुरिंदा है के खूबी को दिहंदा है। गनी मन गरिंदा है के तेज को प्रकाशी है। काल हूँ के काल है के शत्रुन के साल है के मित्रन को बोकस है के वृद्धता की बासी है। जोग हूँ को जंत्र है के तेज हूँ को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है।
रूप को निवास है कि बुद्ध को प्रकाश है कि सिद्धता को वास है कि बुद्ध हूं का घर है देवन को देव है निरंजन अभेव है अदेवन को देव है कि शुद्धता को सर है जान को बचैया है मान को दिवैया है जमजाल को कटैया है कि कामना को कर है तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है महीपन को मंड है कि स्त्रहन नर है विश्व को भरण है के आपदा को हरण है के सुख को वरण है के तेज को प्रकाश है पाई है न पार पारावार हूं को पार जग की जत विचार सो विचार को निवास है हिंगुला हिमालय गावे हब सी हल विध्यावे पूर्व न पार पावे असते अनाश है देवन को देव महादेव हूं के देव है निरंजन अवेव नाथ अद्वै अविनाशी है अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण है के सेवक अधीन है कटैया जम जाल के देवन के देव महादेव हूं के देवनाथ भूम के भुजैया है मुहैया महाबाल के राजन के राजा महासाज हूं के साजा महाजोग हूं को जोग है धरैया द्रुम चाल के कामना के कर है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के छीर कैसी छीरावत छाज कैसी छतरा नेर छपा कर कैसी छप काल इंद्र के गोल के हंस निशी सिहारो महीरा सिंह सन्नाबाद गंगा किसी धार चली सातो सिंध रूल के पारसी पलाऊ गढ़ रूपा कैसी रामपुर सूरसी सुरंगाबाद नी के रही झूल के चंपासी चंदेरी गोड चांद निशी चांदगढ़ की रत तिहारी रही मालती सी फूल के फटक सी गलास कमाऊ गढ़ कांसी बोर सीसा सी सुरंगाबाद नी के सोही अत है हिमा सी हिमालय हर हार सी हलबा नेर हंस कैसी हाजीपुर देख मोही अत है चंदन सी चंपावत चंद्रमा सी चंद्रगिर चांदनी सी चांदागढ़ जोन जोही अत है गंगा सम गंग धार बकान सी बिरंदावाद कीरत तिहारी की उजियारी सोही अत है फरासी फिरंगी फरासी के दुरंगी मकरान के बृदंगी तेरे गीत गायत है फखरी गंधारी गोर गखरी गुर्द जचारी पवन के हरी तेरा नाम ध्यायत है पूरब पलाऊ काम रूप कमाऊ सर्व टौर में विराज जहां जहां जाइयत है पूर्ण प्रताप यंत्र मंत्र तयाता पिनाथ कीरत तिहारी को ना

जानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा सेव निरंकार का चीनत न भयो आप अपनी बुद है जीते वर्णत भिन्न भिन्न।

मन रे छाड़ो परम प्रगट होए नाचो माया माया के डांडे सुर के सन्मुख रनते डरपे सदी के साचे डगमग छाड़ रे मन